सुना पर्वती ने दीदी बहनी तथा दाजुभाई बीच को शुभकामना आदान प्रदान तथा तीज को दरखाने कार्यक्रम में सहभागी बनाऊ परिचय बढ़ाऊ आत्मीयता साटौ।

आयोजक दिदी बहिनी मीडिया हाउस स्टार यति इभेन्ट तथा पार्टी प्यालेस वसुन्धरा काठमाडौँ समय 2084 भदौ 20 गते शनिबार बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म सम्पर्क नम्बर 9857 3001

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो
1: समानता र महिला अधिकारको लागि बुलन्दित आवाज रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज

0: रेडियो थाह संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियता को अभ्यास
1: 99.4 रेडियो थाह संचार स्टूडियो टाइम
0: इट्स 10 p.m.

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक 5 बज्यो।